हिन खाली देख घिनो सब डेंदा गया इशारे संती ओहो सईंदे मुंह वंज लगसी मैं को जेड़े मारे संती हसनी वंजना रेत इया है हसनी वंजना रीत इया है जाए जै वेले सड मारे संगती हसनी वंजना रीत इया है जै वेले सड मारे संगती। बिल्कुल सही तेरी गजल प्रोग्राम दे विच शामिल कर छोड़ी है। सजनो एक गीत दी तरफ वैसू के देखन इंटम जरा है केरा गीत देखना सा सुन दे पे हैं जी सही। उम्मीद करें हैं कि हमेशा दिवांग असारा आज दा प्रोग्राम भी जरा है सजनों को पसंद आंदा पियो सी। सही प्रोग्राम दे विच जरा उसे टाइम जरा ये आवेंदा है सारे कोलू तुहाड़ा फीडबैक आवेंदा है तो उ थोड़ा पढ़न दे विच बाज दफा दिक्कत थींदी पई हुंदी। उम्मीद करें हां कि तुसा नाराज न थी सो। बिल्कुल सही जरा है प्रोग्राम दे विच जरा है तुहाड़े फीडबैक भी शामिल कीते वेंदे पए हन नाल ही नाल जरा है तुहाकू जरा है गीत गावन भी प्रोग्राम दे विच जरूर सुने सू। ते जितने भी सजन असा को सुनदे पए हन इन टाइम उन्हां सारां कोलू ए है कि वक्त को कीमती बनो। वक्त एक ऐसी शय है जेरी एक दफा हाथ कोलू निकल वंजे वल इंसान दे हाथ दे विच वत वक्त नहीं आंदा। वक्त दी मिसाल जिवें बर्फ है जिवें रेत है अगर ओ निकल वंजे तो वल हाथ च नहीं आंदा।

0: यकदम छुड़ेंदो नहीं यकदम।
1: जी सही, यकदम छुड़ींदा नहीं, बिल्कुल सही। कोई भी काम जरा है यकदम नहीं करना, बल्कि सोच समझ ते विचार दे नाल काम करना चाहिए। अग दिन पहले जरा है सोचो समझो ते वल कोई डिसीजन कोई फैसला गिनो, ता इंसान जरा है वल कामयाब थींदा है। असरी नाकामी दी मेन वजह ए थी वेंदी है कि असर जरा है ना पहले फैसला कर खड़ दी है ते बाद इच सोचेने हैं। जी सही, उम्मीद करेने हैं कि आज कल बाद असर जरा है पहले सोचे सु ते बाद कोई फैसला करे सु। कोई भी काम यकदम जरे ले कर रिता वंजे तब बाद ही जरा है इंसान परेशान होंदा है। जी सोने सजनो, प्यारे ते मनमोहने सजनो, आज सरायकी प्रोग्राम फुला भरी चंगेर दी विच जरा अज दा उनवान है ओ है वक्त दी अहमियत, कि वक्त कितनी अहमियत दा हामिल है, वक्त को असा किवें बेहतर बना सकते हैं, ते वक्त दी अगर असा कदर न की थी ता सकू केरे मुश्किलात दा सामना करना पौसी। असारे सजना ने भी प्रोग्राम में शामिल थी के अपने आज दे उनवान दे हवाले नाल अच्छी अच्छी गुफ्तगू की है, जेरे असारे सजन समझाने दे होसन तकरीबन जरे सजन जेरे सकू सुनदे पौंदन तो उनवान कोलू बहुत जरा है फायदा हासिल करें दे पौंदन। तो सही गाल ए है वक्त दी कमी भी है, दिल ता आदे के काफी देर तक तुरे नाल गुफ्तगू करूं, लेकिन गाल है कि वक्त साथ नहीं पिया देंदा, दो मिनट असारे कोल रह गए जैदी विच असा अपनी गाल को मुकम्मल करके तेरे को इजाजत गिननी है। तो सही वक्त अल्लाह ताला दी दीती हुई एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि इंसान को अल्लाह पाक ने दीती है। अगर सजनों पैसा लगा वंजे तो इंसान जरा है वल मेहनत करके पैसा कमा सकता है, अगर इंसान को सेहत लगी गई बीमार थी गई इंसान तो इंसान इलाज करके अपनी सेहत भी बरकरार कर सकता है, लेकिन अगर एक दफा वक्त हाथ को निकल गया वल कोई शह भी हते नहीं आंदी। इंदे वास्ते बेहतर है कि वक्त को असा समझू। आज वक्त है सही जेरे सजन सारे को रुठे वधे हैं, जेरे रिश्तेदार नाराज हैं वन के मना गिनु, आज वक्त है अपने पुराने गलतियां दुते तौबा कर गिनु, आज वक्त है असा अपने आप को बेहतर बना गिनु, क्योंकि अगर एक दफा वक्त हाथ तो निकल गया वल हाथ मलेंदे ता रह वैसू लेकिन हते कोई शह ना सी। आज इरादा करना है कि वक्त को कीमती बनावना है, पुराने गालियों को भुलावना है, मुहब्बत दा एक नवा सफर दा आगाज करना है। ई मुहब्बत दी गाल दे नाल अपने आरजे आदिल सियाल को इजाजत दो, वक्त दी अहमियत को समझो, वक्त को कीमती बनो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह दी अमान।

अच्छा जी काज रमजान सर शुरू कोमा नो उस को खस्ता सुरा चिवादल जी जान खेस्त कवल वाली कना तासुआ चिमा तखाम खखल कोई ची कपड़े दर सर मजन की और कबदरंगी कपड़े मुमुई कना आए हाय आउच दे इस ना दा खाई सुनो दर कड़ी वे ब्लीच लगवले शिवी वे क्रीम लगले लगवले शिवी वे सरगी दे तोरी कड़ी खेस्ता बंगली दिया चोले पोतरी पान जीबुनो

अच्छा जी मैसेज नु सेट तब लग रहा शबा मैसेज नु वाला भी आ खबकी गे हाई हाउ आर यू शो इज वेरी लश फेस अल्लाला अ गुड मॉर्निंग हियर अल्लाला जी आई मोरी शो फॉर्मल जनत फ्रामबुआना गुलाली जान को मोस्ट वेलकम चरतरवान खुनो जमा जानान खुनो शेख टपी में उकड़े अच्छा जी खु अजान खुनो उतात चे जड़ दरकड़े ओ दुमरा अरजान खुनो रकीबा महीनो पता जमा पशान खुनो और डेरा

अच्छा जी हाँ, मैं आपकी तरह बदरंग हूँ। अब ठीक है, नहीं मैं आप पे गया हूँ, आप बड़े हो मैं छोटा हूँ। आई एम मुकद्दस गुल फ्रॉम शेख सुल्तान। गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच मुकद्दस, थैंक यू सो मच।

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome. Very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pegam 97.4 Pahar for Global FM 91 Dera Ismail Khan and Radio Aman 88.4 Dank. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है किसकी जनाब? ये आवाज है कैसे नेचुरल पाकिस्तान की, ये आवाज है तंदुरुस्ती की, ये आवाज है शिफा की, ये आवाज है सेहत की, और ये आवाज है हुस्न और खूबसूरती की। जी जनाब, हर रोज की तरह आज भी आपकी समातों की नजर सुपहर की 4 बज चुके हैं जनाब, और 4 बजते ही यानी कि टी टाइम होते ही, चाय का वक्त होते ही जनाब हम आप लोगों के साथ मौजूद होते हैं। आज है इतवार का दिन। जी जनाब, इतवार का दिन है, 23 रबीउल अव्वल है, 6 सितंबर 2036 और 22 बदरू 2084 है। जनाब आज की तारीख के साथ यानी कि 6 सितंबर इतवार के दिन के साथ जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं, और 6 सितंबर का जो दिन होता है जनाब बहुत ही खास दिन है, और इस दिन खास सेलिब्रेशंस होती हैं क्योंकि जनाब इस दिन को पाकिस्तान में योम दिफा के नाम से डिक्लेयर किया गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे, और कैसे नेचुरल पाकिस्तान आप लोगों के लिए जनाब ढेर सारी प्रोडक्ट बनाकर पेश करता है, और इन प्रोडक्ट्स का मकसद जो है आप लोगों के खूबसूरत जिंदगियों के अंदर खूबसूरतियों को लेके आना होता है, आपके बालों को प्यारा बनाना, आपकी स्किन को प्यारा बनाना, आपको सेहतमंद रखना और आपको खूबसूरत और जवान रखना। यानी कि केसन के प्रोडक्ट अगर आपके घर के अंदर मौजूद है तो इसका मकसद क्या होगा? जी जनाब, इसका मकसद यही है कि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, आप अपने आप को ताकतवर रखना चाहते हैं, आप अपने बालों को खूबसूरत रखना चाहते हैं, आप अपने चेहरे को प्यारा रखना चाहते हैं, क्योंकि केसर नेचुरल पाकिस्तान आप लोगों के लिए सर से लेकर पांव तक के लिए जनाब प्रोडक्ट तैयार करती है। अगर पांव का मसला हो आपको, यानी कि अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं, उसकी वजह से एड़ियां खराब हैं, तो जनाब केसन की क्रैक रिलीफ क्रीम आप लोगों के लिए एक मुआसर हल है। ठीक है जनाब, 250 रुपए की आपको मिलती है। हाथ पांव गोरे नहीं है, निशानात हैं, काले हैं, कहीं पर काले हैं तो कहीं पर गोरे हैं, कहीं पर ब्राउन निशानात हैं, तो केसन की हैंड एंड फुट व्हाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा चेहरों के लिए जनाब केसन की नाइट क्रीम है, आप अपने चेहरे को जाफरान की ताकत से गोरा कर सकते हैं केसन की जाफरानी नाइट क्रीम का इस्तेमाल करके, और आप केसन की लेटेस्ट फार्मूला क्रीम यानी केसन ग्लूटा व्हाइट क्रीम का इस्तेमाल करके भी अपने चेहरे को 4 चांद लगा सकते हैं, अपने चेहरे को जी जनाब नूर से भरपूर कर सकते हैं।
1: फकीरों की निगाहों में
0: जी जनाब, हर रोज आपकी खिदमत में केसन का प्रोग्राम पेश किया जाता है, तीनों बड़े स्टेशन डेरा, टांग और पहाड़पुर से एक साथ, और डेरा के लोग हों, चाहे पहाड़पुर के लोग हों, चाहे टांग के लोग हों, केसन से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और केसन को जो एक दफा इस्तेमाल कर लेता है केसन नेचुरल पाकिस्तान के प्रोडक्ट को, तो हमारी कंपनी के साथ एक लफ्ज लगा हुआ है केसन नेचुरल्स। ठीक है जनाब, नेचुरल्स क्यों लगाए? हम भी साथ में केसन कॉस्मेटिक लगा सकते थे, ठीक है जनाब, लेकिन हमने नेचुरल लगाना पसंद किया है क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, हम जो आप तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं वो प्योरली नेचुरल ऑर्गेनिक होते हैं, हर किस्म के मुजर केमिकल से पाक होते हैं। यही वजह है कि केसन हर घर की जीनत बन रही है, हर घर की जरूरत बन रही है, क्योंकि लोगों की आंखें खुल रही हैं और लोगों को समझ आ रही है कि जनाब एक ऐसी कंपनी भी है जो हमें मुजर केमिकल से हटकर नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, और वो है केसन नेचुरल पाकिस्तान। जी जनाब, पाकिस्तान की ये कंपनी और पाकिस्तान का हर दिन सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हम इसी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, इसी मुल्क से कमा रहे हैं, इसी मुल्क के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। सो पाकिस्तान हमेशा से जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा।

ईसा में ग्राम आज 6 सितंबर है और ये सिर्फ कैलेंडर पर लिखी हुई एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब पाकिस्तान की बेटों ने अपनी जानों की नजराने पेश करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि वतन की हिफाजत सिर्फ सरहदों पर खड़े सिपाहियों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर पाकिस्तानी के दिल की जिम्मेदारी है। ये यौमे दिफा है, ये यौमे पाकिस्तान है, 6 सितंबर है। जनाब उन माओं को सलाम पेश करने का दिन है, यौम दिफा पाकिस्तान, जिन्होंने अपने लखते जिगर वतन पर कुर्बान करके अपने कुर्बान कर दिए। उन बहनों को सलाम जिन्होंने अपने अपने भाइयों को अलविदा कहा। उन बीवियों को सलाम जिन्होंने अपने सुहाग को वतन की मट्टी के नाम कर दिया। और इन बच्चों को सलाम जिन्होंने अपने बाप की अपने बाप की तस्वीर को सीने से लगाकर ये सीखा कि पाकिस्तान की हिफाजत की कीमत कभी कभी बहुत बड़ी होती है।

छह हमने कहा छह सितंबर हमें याद दिलाता है कि कौमें सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसले, इत्तेहाद और कुर्बानी से मजबूत होती हैं। हमारी सरहदों पर आज भी हमारे नौजवान जाग रहे हैं। कोई पहाड़ों की चोटियों पर खड़ा है, कोई रेगिस्तानों की तपती रेत में, कोई बर्फानी हवाओं में, और कोई अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क की हिफाजत कर रहा है। जी जनाब, ये वही सिपाही हैं, यही फौजी हैं, यही हमारे आर्मी वाले हैं। जब रात के अंधेरे में सरहदों पर पहरा देते हैं तो हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। वो खुद सर्दी बर्दाश्त करते हैं ताकि हमारे बच्चे गर्म घरों में रह सकें। वो खुद खतरे में रहते हैं ताकि हम अपने घरों में महफूज रह सकें। ये वतन सामीन इकराम, ये वतन हमें मुफ्त में नहीं मिला है। और ये जो दिन आते हैं, 14 अगस्त के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, 23 मार्च के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, 6 सितंबर के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ यादें ताजा होती हैं और हमें एहसास ये दिन दिलाते हैं कि ये मुल्क खुदा दाद है, हमें प्लेट में रखकर नहीं मिला है। इन लोगों की कुर्बानियों को हमेशा याद करना चाहिए, इनकी इज्जत, इनका मकाम हमेशा हमारे दिलों के अंदर रहना चाहिए। और ये दिन ही हमें एहसास दिलाते हैं कि कोई है जो हमारे सुकून की वजह है कि हम अपने घरों में सुकून के साथ रहते हैं, बिला खौफ व खतर रहते हैं, बगैर किसी की नोक ताक के, किसी की जेरे साया नहीं, किसी के खौफ की वजह से हम जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि अमन के साथ और खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारते हैं। उस वजह क्या होती है? वजह यही हमारे सिपाही होते हैं, हमारे जो हमारे सरहदों की हिफाजत करने वाले होते हैं, और जो जहां तक कि अपने जानों को कुर्बाना नजराना तक पेश कर देते हैं और जानों को भी कीमती नहीं समझते इस मुल्क की हिफाजत, या इस मुल्क को मैली नजर से देखने वालों की आंखों में आंखें डालकर अपनी जानों का नजराना जो है पेश कर देते हैं। तो इन लोगों को हमेशा अपने दिलों के अंदर जगह दें, हमेशा इनका मकाम अपने दिलों के अंदर रखें कि यही वो लोग हैं कि जो इस मुल्क के अंदर सुकून में रहने की हमारे लिए वजह है। जी कहते हैं खलील दाबे जवान, और आप अपने शहर के एफएम से केसन नेचुरल पाकिस्तान का केसन टी टाइम सुन रहे हैं। हमारे साथ रहिए और इस घंटे में आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करते हैं हम, इन ढेर सारी बातों के अंदर आपकी खूबसूरती की बातें, आपकी सेहत और शिफा की बातें होती है।

0: देखिए जनाब, हमारे साथ साथ आप रहेंगे और आप हमें ज्वाइन करेंगे जनाब। हमारे नंबर आप लोगों के पास मौजूद है जिसके ऊपर आप लोग हमें कॉल करते हैं, SMS करते हैं, वो 03449363366। और ये कौन आया आते ही जिसने हमें सलाम किया? जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, खैर है? क्या हाल है? खैर है
0: जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन इन सर नाल? नान से सो अपना सिंह
1: मैं जी, कहां करणवाल तो

0: देखभाल करें ना, हम मुलाकात
1: कौन इंसान नाल नान से सो अपना सही
0: मैं भी तां करणवाल तो गल करें ना, हम मुलाकात में ते बात तो असा भी एक शौक है जो असा के तो आस दो तो चार पांच प्रोजेक्ट मन में अंतर है कहते ना।
1: अच्छा तू सा अपने पास से कैसे गिनना है पहले से कोई दसो ना।
0: ओ ताकत मेरा ताकत वाला जरा नहीं जरे जिसमें ताकत नहीं है
1: ताकत प्लस केसन द ताकत प्लस
0: इस्तेमाल करू चो पता लगो अभी तक कोई आदमी है ना बे करू को इस्तेमाल हो रहे मैं तैयार मैं कहला तो मैं उन्होंने रास्ता नहीं पी सके मैं इंशाला उन्होंने समान ऐसा खोले के ना
1: कोई घट सी नहीं वध सन इंशाला केसन दे प्रोडक्ट जेरे भी लोग गिन के वेंदे ना तो ओवला गिनदे रहंदे उन्हां को आदत लग वेंदी है केसन दे नाल को बेशा इस्तेमाल कर दे तो उन्हां को मजा भी न करे सी। ठीक है सही
0: बिल्कुल बस पक्की जेरी मैं आपे वास्ते आ दे ना उन्हां के बस सब कुछ है मैं के चलो तू सजी दे ना खैर मैं सब इस्तेमाल कर खैर सब
1: बस ठीक है सही तुसा ना कह रहे सही तो इलाका तुरा कह रहे एक दफा बुला के दसो ताकि तुरे लिसनर सारे सुन दे पाओ सुन तुरे
0: सारे इलाका ये रणवाल दा गांव है छोटे जे शहर है ना।
1: अच्छा रणवाल दे छोटे जे गांव ठीक
0: फेल मदरसे दे नाल मेरी दुकान है मुलाजम दुकानदार प्रदेशन दे सा है दुकान च मिल जी ते घर च मिल जी।
1: अच्छा ठीक है जी मुलाजम दुकानदार केरा मदरसा दे पे वैसे खवातीन अगर घर रबता करें तो इन्होंने घर गिन सकते हैं सारे प्रोडक्ट क्रीमा सारे अपने को जरूर रखा है स्पेशल ग्लूटा वाली क्रीम गिन वजह हाजी जरबत खान को जाफरानी क्रीम गिन वजह क्योंकि हम मौसम शुरू थी पे क्रीमा का। ठीक है सही पसीना ना सी गर्मी ना सी तो लोग जिहड़े 8 महीने मुंह काला कीती वदे ना ओ हुण मुंह चिट्टा करे सन वाला के तो ओंदे वास्ते सारे क्रीम आपणे कोल जरूर रख्या है तुसा। ठीक है
0: बिल्कुल ओ तरी गए ना जे तक कोई दुकान ते कोई जाने आले तो दुकान ते गिन ते कोई जनाना आने तो घर लगे
1: रहे। हां बस ठीक है सही ए सारा पॉइंट ठीक है रणवाल दे विच मुलाजिम परदेसी भाई दी दुकान भी है ते घर च किसन दे

0: काले को कोई मिठा नहीं कहता, काले को तो कोई मिठा कहता ही नहीं है, ठीक है जनाब। जो लोग मिठे हमें लगते हैं ना वो चिट्टे होते हैं। तो अगर आपने भी मिठा बनना है, और ये कॉम्प्लीमेंट किसी से सुना है कि यार आजकल तो बड़े मिठे लग रहे हो, तो फिर आपको केसर की कौन सी क्रीम सबसे पहले लगानी चाहिए, जो आपको जी जनाब प्योर चिट्टा बनाती है, और वो है जनाब केसर की ग्लूटा व्हाइट क्रीम। बहुत ही अमेजिंग। और इस वक्त आप यकीन कीजिए कि हमारी ग्लूटा व्हाइट क्रीम, हमारा ग्लूटा व्हाइट साबन और हमारा ग्लूटा व्हाइट फेस वॉश छाए हुए हैं, और हर दुकानदार कॉलिंग करके कह रहा होते भी एक दर्जन साबन, दो दो दर्जन। अब दुकानदार हमें ग्लूटा व्हाइट सोप के दो दो दर्जन के ऑर्डर देते हैं, इतनी डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह इस रेंज की बढ़ गई है। एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है
0: जनाब? क्या हाल है जनाब? अंकल असद हमारे साथ आ चुके हैं, मोहतरम कैसे हैं? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह, पाक अल्लाह का एहसान है। हमारे साथ स्कूल में एक उस्ताद हुआ करता था।
0: अच्छा जी।
1: तो चार पांच साल हमारे साथ रहा ना, मैं अकाउंटेंट था और तनख्वाह मैं दिया करता था ना।
0: अच्छा जी।
1: तो उसने नौकरी को छोड़कर दुकान निकाली है, मार्केट में दुकान निकाली है।
0: अच्छा जी, ठीक है।
1: तो आज मैंने कहा यार क्यों ना इससे बात की जाए ना, तो आज उसके पास मैं गया, जो ही गया उसने चाय का कह दिया। मैंने कहा चाय मैं तब पीऊंगा जब मेरी फरमाइश पाप पूरी करेंगे।
0: अच्छा जी।
1: तो उसने कहा फरमाइश नहीं, आपने तो हमारी बड़ी खिदमत किया, बताओ जो कुछ बताओ। मैंने कहा ऐसा है कि चाय बारी पीऊंगा, पहले मेरी बात पक्की कर लो। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा कैसन के प्रोडक्ट लाने हैं।
0: अच्छा जी।
1: तो उसने कहा बिल्कुल आपकी बात मैं मान लूंगा, लेकिन कल मैं लाहौर जा रहा हूँ।
0: अच्छा जी, ठीक है।
1: परसों आऊंगा तो बुध के दिन से इंशाल्लाह फिर अब मैं लूंगा और आपको फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। उसने कहा तो मैंने कहा ठीक है, तब फिर मैंने चाय पी ली है। मैंने कहा 10,000 से कम ना हो, कम से कम 10,000 के प्रोडक्ट हो।
0: नहीं अंकल, वो 10,000 की रखें या 2,000 की ना, आप उन्हें एक बात तो ये कहें कि भाई आप सामान रखें, कस्टमर हमारा खुद ब खुद आपके पास आएगा, आपको बेचने की टेंशन नहीं होगी।
1: मानने वाले शख्स है, मतलब बड़ा वक्त अच्छा वक्त हमने गुजारा जी।
0: अच्छा जी, ठीक है।
1: वही वो कर लगा इंशाल्लाह, फिर वो हाल वाल दे देगा।
0: जी जी, बहुत मोहब्बतें आपकी जनाब, शुक्रिया। आप हमारी कंपनी की बेहतरी के लिए, मेरे लिए स्पेशली लगे रहते हैं कि पॉइंट्स बनाते हैं।
1: नहीं, आपकी कंपनी के लिए रातों को दुआएं मांगते हैं, आपके लिए दुआएं मांगते हैं कंपनी।
0: टांग में कामयाब होना बड़ा मुश्किल काम है, टांग शहर के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आप लोग हमारी कंपनी को कामयाब कर रहे हैं, वो एक रिकॉर्ड बन रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में लोग हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और ये इंशाल्लाह
1: और टांग वाले मोबाइल नंबर नोट कर ले, 0344933366।
0: इतना आसानी के साथ
1: उन्होंने क्या होगा,
0: इंशाल्लाह जी सेव कर लिया होगा। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब। और अंकल से तुम्हारे साथ थे और केसन का नंबर बता रहे थे, 0303449333366। जी जनाब, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
0: जनाब ठीक ठाक? अस्सा सादिक भाई छीणा कोल सारे नाल, इवें के मैं गलत गया या बोल गया या चुक गया, पहले दसो मैं को
2: ना भूल देवे तो ना चुक देवे।
0: चुके तो ओ वदन जे हल तक केसन नहीं गी दी है जी, इवें गाले
2: चुका वो बंदा वदे जे गिदा तेरी कशाय नहीं हो, चुका वदा
0: जे हल तक केसन को टच ही नहीं कीता, जे केसन नु ते 10 रुपए भी नहीं ले, वो बंदा सब को ज्यादा चुका वदा है कि को अच्छी शय हल तक, अच्छी शय तक को बंदा नहीं पहुंच सका।
2: 10 रुपए ले दी तो 500 दा फायदा
0: थी सी। किवें हाल है सादिक भरा? ठीक ठाक ही, चंगे वदे वे तुसा? मौसम चंगा है तुहाडे पासे कि ना? फिलहाल उवें गर्मी है,
2: माशाल्लाह तो बारिश थी है, मौसम कोई गवार है, बड़ा मजार है।
0: अच्छा, मौसम चंगा, यानी कि मौसम को कोई गिला कोनी तो को फिलहाल?
2: नहीं नहीं, तुहाडा प्रोग्राम भी चंगा है, तुसा ही चंगे है, तो सुनाण वाले भी चंगे हैं।
0: तो सबको वडी गल है कि तुसा आप चंगे है जेरे कॉल कीती पैवे सर।
2: माशाल्लाह
0: साहब, चंगे

0: दुर्योधन।
1: केसन जी जनाब, स्वीट दुर्योधन हमारे साथ है और कहते हैं द यूजर ऑफ ओनली केसन नेस्ट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम हर दिल अजीज आरजे एंड मोहतरम मुसा जी, कैसे हैं आप एंड आपके बेस्ट लिसनर्स। शो हमेशा की तरह मेरा फेवरेट और पुर असर है। के यू हया खान सोनिया आपी हैप्पी इफ्रा का एक सलूट। हैप्पी इफ्रा कैसी हैं आप सब एंड हैप्पी वाली इफ्रा, मुझे तो आप जानती ही होंगी। अगेन वेलकम टू हमारा अपना केसन घर। पहले भी उस्ताद जी को के बाद मैंने आपको वेलकम किया गुलाब के फूलों के साथ, मगर मेरे मैसेज को किसी और का नाम दिया गया। खैर मुझे आपके आने से बहुत खुशी हुई। ऑलवेज बी हैप्पी। स्पेशल सलाम टू सोनिया पी के यू आया खान हैप्पी इफ्रा एंड ऑल लिसनर। अच्छा यानी कि लड़की अब तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने आपका मैसेज जो है इधर उधर कर दिया है, ये कैसे हो सकता है? ये आपकी अपनी गलती होगी कि आपने नाम किसी कोई और लिखा होगा। गलती में सेंड करते वक्त ना बंदा भूल सुल जाता है, तो आप चेक कर लीजिएगा, मेरी तरफ से गलती हो नहीं सकती। कैसे हो खलील भाई? मैं हूँ हमजा बलोच कुराई से। शो इज वेरी नाइस भाई। केसन तो पाकिस्तान में छाई हुई है, लेकिन अफसोस हम केसन के प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। वो क्यों भाई, क्या हो गया आपको? कौन सी पाबंदियां हैं आपके ऊपर?
2: यकीन है भरोसा
1: केसन, यकीन है भरोसा है जनाब। अच्छा जी खलील भिरा हाल सुना, मैंने विच ताकत तबाह आ गई है ते हुन मैं को चिट्टा करो चिट्टा करे सू तो तू बहुत मिठा थी से ना सही चिट्टा करो तिखे तिखे लगता। अच्छा जी ग्लूटा वाइट भी दो ते जाफरानी भी नाल जरूर दो। केसन पाकिस्तान जिंदाबाद। चादना चा के हाँ ना सड़ा करो, आपको पता है मेरी चा पकावन अली कोनी। लास्ट में सबको सलाम आमिर
3: स्टेशन।
1: वही तुम्हें ताकतवर हमने बनाया है केसन ताकत प्लस से। हाँ जी चिट्टा भी हम बनाएंगे, चिट्टा बना लिया तो फिर तुसी आग सो के कुड़ी भी सारे वास्ते गोलो। हाँ जी ओ कमी बात असा करे सू तुम्हारे वास्ते, ये सारे काम साकू दे चा ठीक है सही, ये ऐसा कर दे सू तो कुछ चिट्टा भी कर दे सू ते मिठा भी कर दे सू ते वाल कोनी ता केसन हेयर आयल नाल तोरे सिर ते वाल भी आसन ते ताकत कोनी तो ओ भी असर रे रे सू। लेकिन ए जरा शादी वाला मसला है ना, ए तुसा कह बे न राबता करो। बल्कि कल एक यूज एक फीमेल ने सबको कॉल की थी से ते उन्होंने आके कि मैं मैरिज बैरो है मेरा ठीक है जनाब, शादियां दफ्तर है सारी बहन दा बहुत सारे लड़कियों के रिश्ते इसलिए नहीं हो रहे होते कि बेचारियां हद से ज्यादा कमजोर होती हैं, है जी ना, दुबली पतली होती हैं, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता उनमें। तो क्या करते हैं कि जनाब और जब तक जिस्म भरा हुआ ना हो ताकत ना हो तो फिर या बहुत ज्यादा मोटी लड़की हो शादी के दिनों में इस उम्र में शादी की उम्र में या बहुत ज्यादा पतली हो तो ये दोनों बहुत बड़े क्रूशियल बहुत मुश्किल टाइम होता है ये। और इसमें लोग बड़े एतराज कर रहे होते हैं लड़की बहुत मोटी है, हैं जी लड़की जो है बहुत पतली है। तो भाई अब आपका हल किसने ने ढूंढते, वो भी बहन मेरे ख्याल में यही बात सोच कर आई है कि उन्होंने दो चार लड़कियों के रिश्ते करवाने थे, तो आगे लड़के वालों की तरफ से ये बात आ रही होगी कि भाई बाकी तो सब ठीक है नैन नक्श ठीक है, लेकिन लड़की जो है ना हैं जी पतली बहुत है, हवा चली तो हमारे घर से उड़ ना जाए जी। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो बहन आई हुई थी कि भाई ताकत प्लस चाहिए, तो हमारी दुकान बंद थी तो बहन आज आई होंगी, अगर मैं नहीं था तो जरूर उनको ताकत प्लस जो है वो मिल गई होगी और उनको यूज कराएं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हंसी से हटकर मजाक से हटकर अगर किसी लड़की ने अपना वजन बढ़ाना है तो इसकी डोजेज 2 चम्मच रोजाना 3 माह है ठीक है जी। ये नहीं है कि आप 1 हफ्ता इसका इस्तेमाल करेंगे तो पहलवान बन जाएंगे, नहीं 1 हफ्ते में आपको फर्क महसूस होता है। अगले हफ्ते में आपको आपके जिस्म के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। तीसरे हफ्ते में जो है वो थोड़ा बहुत जिस्म आपका, यानी कि आपके घर में तो लोग बहुत मुश्किल से आपको कहें कि तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली आ गई, लेकिन अगर किसी ने आपको 2 महीने बाद देखा होगा तो वो आपको जरूर बोलेगा कि भाई तुम्हारी जिस्म भरा भरा सा फील होता है, फरवा जिस्म बन गया तुम्हारा। सो जिन बहनों को ये मसला है कि वजन कम है बहुत ज्यादा, तो 3 माह तक इसे रेगुलर इस्तेमाल करें। वो लड़कियां जिनको कमजोरी है और कमजोरी इस हद की है कि भाई उनको काम करते वक्त मौत आती है, मतलब ये कि बंदा थक जाती है बाज़ों का, काम नहीं हो पाते ना, इसको बोलते मौत आती है जनाब, यानी कि काम करने को दिल ना करना, दूसरे लफ्ज में कहा जाता है यार इसको काम करते मौत पड़ती है, तो बेचारी का कसूर नहीं होता, उसके अंदर एनर्जी इतनी होती है, इतनी ही होती है कि भाई वो इतना ही काम कर सकती है। ठीक है जनाब, आप उसको एक मोटरसाइकिल के अंदर आपने पेट्रोल डाला तो वही उसके अंदर जितना पेट्रोल है उतने तक जाएगा ना, एक जगह पर रुक जाएगा। आप उसको थप्पड़ लगाओ, उसकी इंसल्ट करो, उसकी बेइज्जती करो, किस कंपनी के हो तुम, किसने बनाया है तुम्हें, किस मिट्टी के बने हो, किस लोहे से बने हुए तुम, वो नहीं चलेगा। क्यों चलेगा, उसके पेट्रोल ही खत्म हो गया। तो इंसान की भी यही पोजिशन होती है भाई, एनर्जी खत्म हो जाती है तो बंदा जो है ढह जाता है, पड़ा जाता है, नीचे पड़ जाता है, कहते बस मैं मुझसे अब नहीं होने वाला। तो ये उन लोगों के लिए है ताकत प्लस, फौरन ताकत रिकवरी बहाल और फिर से वेदनादन है जनाब, झाड़ू पे झाड़ू मारते जाओगे थकोगे भी नहीं बिल्कुल भी, ऐसी एनर्जी ताकत प्लस आपको देता है। आपकी जो इनसफिशिएंसी है विटामिन्स की, गैर मुतवाजन खुराक की, उसको पूरा करता है। तो ये लोग एक हफ्ता भी इस्तेमाल करेंगे तो टन टन टन टन बिल्कुल जी जबरदस्त उनको कमजोरी खत्म हो जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी, काहली खत्म हो जाएगी। ये तो एक आप जार ले लेंगे आपके लिए काफी है, लेकिन जो वजन को बढ़ाना है तो भाई फिर वहां पर कुछ आपको टाइम देना पड़ेगा। खलील भाई हाल, अच्छा जी ये हो गया वला के उन्हें मैसेज खोल बैठा मैं, आम मेरा मान पाकिस्तानी दाते सराकी लिखा पिया होंगे तो उनको पढ़ते पढ़ते बहुत सारा टाइम मेरा लग पैदा। सलाम जी अमीर हुसैन कोट वाली दाद को पहले होने अंते आजकल डेरे चाह गए तो नैन झलक दे जाम दसन मैं खार सजन दिया अखियां हैं जी फनकारियां फनकारियां हुन फनकार सजन दिया अखियां नाशाद दिला को शाद करन मंठार सजन दिया अखियां कैनात अमीर असीर जेंदी शाहकार सजन दिया अखियां। जी जनाब अमीर हुसैन जो है ये भी पिछले हफ्ते इन्होंने हमारे शैम्पू हमारे हाजमा कंट्रोल सिरप पर ताकत प्लस इन्होंने मंगवाई हुई है, ये भी हमें बताएंगे धीरे धीरे से जैसे पीते जाएंगे जिस्म के अंदर तब्दीली को महसूस करते जाएंगे। और 03449363366 पर अपनी बातें अपना फीडबैक बताते जाएंगे।
0: कमजोरी को कर दो बाय बाय केसन ताकत प्लस।
1: हाँ जी कमजोरी को कर दो अब बाय बाय केसन ताकत प्लस के साथ। रोजाना दूध के अंदर 2 चम्मच आप मिक्स करके इस्तेमाल करके रात को इस्तेमाल कीजिए और कुछ ही दिनों के अंदर आप अपने अंदर ऐसी एनर्जी ऐसा स्टेमिना महसूस करेंगे जो आपको पहले कभी महसूस नहीं हुआ। ठीक है जनाब एक कॉलर हमारे साथ हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हमारी आपकी है सोनिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सोनिया।
3: वालेकुम सलाम जी
1: कैसी
3: हैं? ठीक है भाई
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सुनाएं। ठीक है आप खैरियत से हैं?
3: जी हाँ जूरी अजन को दोबारा वेलकम करके शुक्र है कि आ गए प्रोग्राम में। रौनक आ गई है।
1: हाँ रौनक आ गई है ना। वो कह रही थी कि मैंने उस दिन मैसेज किया है आपने जो है किसी और के नाम से पढ़ लिया। मेरी कोई दुश्मनी है इसके साथ सोनिया पे?
3: नहीं नहीं
1: वो लड़की को क्यों लगता है कि मैं इसका दुश्मन अव्वल हूँ कि इसके साथ जाती है?
3: फ्रेंड भाई है चारों तरफ वहाँ ऐसी तकरार होती है।
1: अच्छा तकरार होती है
3: और भाई आपको चाय नहीं मिली वक्त पर गैस नहीं था।
1: आज कसम से चाय नहीं मेरे ख्याल में पूरे इलाके में गैस नहीं है।
3: गैस नहीं है और दूसरा ये कि जब ये लड़के वाले कहते हैं लड़की मोटी है कमजोर है ये वो ना एक दफा अपने बेटे को सामने बिठा के ना उसका भी भूता शरीफ देख कर जाया करे।
1: आपको तो गुस्सा लग गया उसके लिए दिया है ताकत प्लस ये कौन सी बात है।
3: हाँ ना वो तो हम इस्तेमाल कराएंगे मतलब वो बहुत सारी खामियां निकालती है ना जब वो आती है ना उसकी तो कद छोटी है इसमें बच्ची का क्या कसूर है?
1: तो बच्ची का क्या कसूर है? लेकिन अगर किसी का वजन कम है ना दुबले पतले अब उनका तो हमने हल आपको दे दिया है।
3: जो मोटी हल दे दिया
1: जो मोटी है उनका भी हल दे दिया
3: वो भी है ना घर बैठा के एक दफा 5-6 महीने अपने बेटे का बूटा शरीफ हो सारा उसको चेक करके जाया करें। चांस सी लड़की हो, कहाँ से आप जैसी है अल्लाह नस्बत दे वैसी होगी।
1: ठीक है ठीक हो गया, आप किसको सुना रही है पहले मुझे बताए।
3: आपने बहुत कहा ना कि लोग कहते हैं कि ऐसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए। बाकी प्रोग्राम होते चले जा रहा है और हैप्पी वाली इफ्ता
1: शुक्रिया, थैंक यू सर, आपकी बड़े गुस्से में थी। हाँ ये भी होता है ना, लड़की वाले लड़कियों की तो इतनी खामियां ढूंढते हैं और जो है लड़के को नहीं देखते हैं।
4: सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, सखीलाल कलंदर।
1: जी जनाब बिल्कुल जी, लेकिन सलूशन भाई केसन के पास आ गया है। बहुत ज्यादा वजन है आपका, वो ठीक नहीं होता। बहुत वजन कम है वो भी ठीक नहीं है। वेट कम पेट कम को इस्तेमाल करें। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपका वजन बढ़ा हुआ है, और अगर बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, तो केसन किस तरीके से काम करती है, ताकत प्लस जो फार्मूला है, ये बेसिकली आपको भूख भी लगवाता है और आपके जिस्म के अंदर तवानाई की जो कमी होती है, क्योंकि हम जब खुराक खाते हैं तो वो बाज़ुकात मुतवाजन नहीं होती। यानी कि कोई लड़की है जिसको सब्जियां अच्छी नहीं लगती, वो हर वक्त जो है जंक फूड खाती है, उसको सौ वालदैन बोले कि बेटा पालक खा लो, गोभी खा लो, कद्दू खा लो, तूरी खा लो, टिंडे खा लो, है जी, वो कहते नहीं भाई ये कुछ चीजें हैं खाने की, ये हम नहीं खाते। तो वो क्या रह जाए, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनके अंदर भी बहुत सारे विटामिन हैं, ठीक है जनाब, जो आपके बॉडी को चाहिए होते हैं, मिनरल्स हैं, इसी तरीके से जो फैट्स होते हैं वो आपको जंक फूड के अंदर मिलते हैं। तो मुतवाजन खुराक ही आपको, ठीक है जनाब, जो मुतवाजन खुराक होती है उससे आप सेहतमंद रहते हैं। तो ये जो खुराक हमने आपको बना के दी, ये बेसिकली खुराक है, ये एक मुतवाजन खुराक है, कोई दवाई नहीं है। ये आप अपने जहन के अंदर रख लें भाई, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, चाहे ताकत प्लस है, चाहे वेट कम पेट कम है, चाहे हाजमा कंट्रोल है, ठीक है जनाब, ये कोई दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ये बेसिकली आपको फायदा देने वाली खुराक है, नेचुरल, जो हम आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है जनाब। ताकत प्लस जो है ये बेसिकली उन जड़ी बूटियों को मुश्तमिल है जिनके अंदर ताकतवर विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है जनाब, जो आपको ताकत देते हैं, जैसे अश्वगंधा है, जैसे सफेद मूसली है, जैसे सतावर है, ठीक है जनाब, ये फौरी तौर पर आपके जिस्म के अंदर एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक है जनाब। इसके अलावा जो हमारी वेट कम पेट कम है, वो अपने कुदरती अज़ा से आपके जिस्म की चर्बी पिघलाती है। शहर के लोग मुझे जितने सुन रहे हैं, डेयर अफजल खान में अब बहुत ज्यादा लड़कियां वजन गेन कर चुकी हैं, क्योंकि इनकी खुराक अब सब्जियों से हटकर पिज्जे के ऊपर आ गई है, बर्गर के ऊपर आ गई है, पकौड़ों, समोसों, गोलगप्पों के ऊपर आ गई है। ये वो चीजें हैं जो बहुत जल्दी से आपकी चर्बी बनाती हैं आपके जिस्म के अंदर। यानी कि अगर आपने एक बर्गर खाया ना, एक बर्गर
5: रोजाना,
1: अगर किसी ने एक बर्गर खाया तो इसका मतलब ये है कि उसने उस टाइम में 6 से 7 रोटियां खाई हैं। इतना ज्यादा कैलोरीज होती हैं बर्गर के अंदर। अगर आपने एक पीस पिज्जे का खाया, एक पीस, तो आपने 6 रोटियां आपने खा ली, इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है इनके अंदर, और यही बेतहाशा और यही वजह होती है। अब आपको सोच रहे होंगे कि भाई ये तो गिजा से भरी चीज है, अगर 6 रोटियों जितनी ताकत आपको एक पिज्जे के स्लाइस से मिल रही है या बर्गर से मिल रही है, ये तो बेहतर है। नहीं बेहतर ना, आपका काम करना, आप जितना काम करते हो, आपको 2 रोटियों जितने कैलोरीज चाहिए। आप घर का जितना काम करती है ना, अगर आप 2 रोटियां खाएंगी तो आपका काम चल जाएगा। अब आपने पिज्जा खा लिया या बर्गर खा लिया तो आपने कितने रोटियां खा ली, 6 से 7 रोटियां खा ली। अब आपको जो काम करने के लिए ताकत चाहिए ना, वो 2 रोटियों की थी, लेकिन आपने 4 एक्स्ट्रा खा ली, वो 4 आपकी चर्बी बन जाती है। मुख्तसर बात यह, ठीक है जनाब। ये समझने को तो ये बात है कि ये तो बड़ी ताकत वाली चीज है भाई, है जी, इससे तो इतनी कैलोरीज मिल रही है। भाई आपको इतनी कैलोरीज की जरूरत ही नहीं है, आपको जितनी की जरूरत है वो इस्तेमाल कर लेता है आपका जिस्म, बाकी मांदा जो होती है वो चर्बी की सूरत में आपके जिस्म के ऊपर थप जाती है, है जी ना, चिमट जाती है आपके साथ। तो ये मैं कह, तो उसी गैर जरूरी चर्बी को पिघलाने का काम करती है केसन, वेट कम पेट कम, जो कि फौरी तौर पर आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, और उसके बाद आपकी चर्बी पिघलने और जलने का अमल शुरू हो जाता है। चाहे तो आप वेट कम को इस्तेमाल करने के बाद साइंसी तौर पर तहकीक करना चाहें तो आप यूरिन का टेस्ट करा लें, आपको साफ पता चल जाएगा कि आपका यूरिन का जो टेस्ट।
5: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
6: Your music, your request.
7: This is Radio Station. Radio Aman.
8: Radio Aman. Kabhi naram, kabhi garam. म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन।
9: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم ورته لګېدای شي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته. الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نزد ټریفک پوائنټ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304. الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نزد ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی.

को कोई मौका मिलता है तो इंसाफ करो, सच बोलो, साथ दो, हिमायत करो, ताउन करो, किसी की भी इज्जत रुसवाई न करो। यही आपके लिए कल फिर रास्ते में फूल बनेंगे, वगरना आपके लिए कांटे बनेंगे। इस हवाले से दो बातें तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, एक और बात आपके साथ शेयर करते हैं। पहाड़पुर जिला डेरा इस्माइल खान, डिस्ट्रिक्ट है पहाड़पुर और डेरा इस्माइल खान से मुल्लिक है। एक गरीब आदमी ने शादी की थी जिला पहाड़पुर में, तो एक गरीब आदमी ने शादी कर ली, और गरीब आदमी जब शादी करेगा तो कितने कर्जे लेगा, कितनी आपको पता है कि शादियां कोई ऐसी हो जाती हैं। तो बहरहाल इसने जितनी कुर्बानियां दी, शादी इसकी हो गई, तो वहां पे एक डाकू की नजर इसकी बीवी पर पड़ी। दियाती माहौल था, कहीं देखा, उसने कहा ये बीवी को तुम तलाक दोगे। उसने कहा दिमाग तुम्हारा खराब है, मेरी बीवी है, मैंने शरण इसको इस्लामी तरीके से अपनाया है, मैंने खर्चे किए, मैंने शादी। उसने कहा तुम्हें हर सूरत में इस बीवी को क्या करना होगा, तलाक देने। उसने कहा दिमाग तुम्हारा खराब है। बड़ा रफड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा, लेकिन उसने कहा नहीं। तो रात को ये आदमी उसके घर जाता है, उसकी कनपट्टी पर यानी उसके सर पर बंदूक तानता है कि अगर आपने तलाक नहीं दी तो मैं गोली से तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। तो उसने जब ये देखा, उसने कहा खुदा रहा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे दाढ़ी से पकड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव में गिरता हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ, और मुझसे कोई गलती हुई तो। उसने कहा नहीं, गलती मलती नहीं, आप ऐसा करें कि आप इसको तलाक देंगे। उसने कहा भाई क्यों तलाक दूंगा कोई, उसने कहा बस मैं शादी करूंगा। उसने कहा ये जुल्म मत कर, मैं मजबूर सही, बेसहारा सही, सारी बातें सही हैं, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, लेकिन याद रखो अगर तुम ये जुल्म कर लोगे मेरे ऊपर तो तुमसे ज्यादा ताकतवर एक और जात है, तुमसे ज्यादा पावरफुल, हाँ जी, कादर मुतलक, इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर है, जब्बार है, गफ्फार भी है, लेकिन जुल्म मेरे साथ मत करो। उसने कहा दिमाग खराब है, अब ऐसा करें कि तलाक दें। तो जबरदस्ती उसे तलाक दिलवाई इस बदमाश और डाकू ने, पहाड़पुर का वाकया है। वो तलाक दिलवा के उसने कहा तबाज के साथ मैं शादी करूंगा। अभी शादी हुई ही नहीं थी कि जैसे ये घर गया है, सुबह सुबह इसका मतलब एक फार्म था, और उसने घर में बहुत खूबसूरत एक ताकतवर बड़ा खर्चा उस पर करता था, मतलब मक्खन और दूध और पता नहीं बादाम वगैरह और अखरोट वगैरह और पिस्ता उस बैल को खिलाता था, बड़ा प्यारा और बड़ा अजीज था इसको। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे ये घर में दाखिल होता है ना, घर में वो बैल ने रस्सी तोड़ी और इसके ऊपर हमला, और इसको मतलब टकरे मार मार कर जमीन के साथ और दीवार के साथ और घर के दरवाजे के साथ इसको मार मार कर ऐसा कर दिया कि उसकी जान हड्डियां सारी टूटी और सारा जख्मी हुआ और सींग उसके अंदर घुस गए। उसको ऐसा मारा के बाद बड़ी जिल्लत और रसोई बड़ी तकलीफ दे मौत उसको दी, और फिर उसके बाद बैल उस साइड पे हो गया, सींगों से मार मार कर घसीट घसीट कर बुरा हाल मार दिया उसको। तो डियर सामेईन और डियर नाजरीन, अभी सुबह सिर्फ एक रात गुजरनी थी, सुबह वो अंजाम तक पहुंचा। तो डियर सामेईन और डियर नाजरीन, कहते हैं ना कि अनकरीब जालिम जान लेंगे कि कौन सी जगह लौट कर जाते हैं। मखलूक खुदा को तंग करना कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है। हमेशा तौबा और इस्तिगफार पढ़ना चाहिए और अपने आप को एक कमजोर और नौतवान समझना चाहिए। इज्जत मतलब अगर आप चाहते हैं तो वो आजजी में है, न कि बड़ाई में है, न कि जुल्म में है। फिरौन ताकत से खुदाई का दावा नहीं किया था, फिरौन ने ताकत से नहीं किया था कि उसके पास ताकत थी, फौज थी वैसे, बल्कि गरूर ने उसको मार दिया था समंदर में। गरूर की वजह से इंसान फिर खुदाई का दावा, तकबुर की वजह से कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो इसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। दो बातें हैं कि इंसान अगर चाहे जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, ना इंसाफी जिसके साथ भी करे, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, अगर इंसान जुल्म करता है उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक इसके साथ जुल्म हो नहीं जाता, उस वक्त तक ये मरेगा नहीं। दूसरी बात, जो सदका करेगा वो कभी गरीब नहीं होगा। तो ढेर सामेईन और ढेर नाजरीन, तीन कहानियां कमाल की और क्लास की और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, लेकिन सबक इसमें हर अमीर के लिए, गरीब के लिए, मजबूर के लिए, बेसहारा के लिए, ताकतवर के लिए, बेइख्तियार के लिए, सब के लिए सबक मौजूद हैं, मेरे लिए भी मौजूद हैं। इंसान वही अमल करे, उस किरदार को अपनाए, उस अखलाक को अपनाए जो मतलब अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो मर के देख। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख।

0: डियर सामीन और डियर नाजरीन, आप सुन रहे हैं रेडियो अमन FM 88.4 टांक। और आपके सामने आज मैंने जो बात रखी है, मकाफात अमल जैसी करनी वैसी भरनी, ये कभी ना कहें कि अगर आप ज्यादती करेंगे तो अल्लाह की, चलो इंसान की गिरफ्त से बच जाएंगे। इंसान बहुत कमजोर है लेकिन अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। आज हमारे साथ आबिद अली आए हुए हैं, स्पेशल आए हुए हैं। तो बहरहाल जब रास्ते में मैंने इसको देखा तो हाथ से पकड़कर इसको मैं रेडियो में ले आया। अगर न पकड़ता तो फिर बेचारा रह जाता। तो बस कुदरती अल्लाह की मेहरबानी हुई कि आबिद अली को मैंने खुद देख लिया। मैं तो सवेरे आता हूँ आधा घंटा, तो आज आबिद अली भी सवेरे आया था, तो रास्ते में आ रहा था, ठोकरें खाता हुआ, तो मैंने इसको हाथ से पकड़ा, रेडियो ले आया। और आज इससे हम काफी 6-7 महीनों के बाद इनसे नात सुनेंगे, तो देखते हैं। आबिद अली किवें हाल है?
1: तू सुनो।
0: चंगा वदे हैं?
1: खैर शुक्र है।
0: खरियत है?
1: खैर।
0: सेट हैं?
1: मां वदे हैं।
0: अच्छा, आप डियर सामीन आप भी देखें कि आया आबिद अली की आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही। तो आबिद अली सुना घर बलोच कुल की में आई घर में, जितना को पता है जो तू अहमी आदमी, जो मजदूर आदमी है।
1: यार बात सही में है ना, जो नात पढ़ाने जरा शौक नहीं।
0: हाँ
1: शौक जो बस।
0: अच्छा,
1: ए बारा कुराड़ा शौक है नात पढ़ाना।
0: नात पढ़ाना तू तू उन तक घर बलोच को क्या आना है?
1: घर बलोच तो नहीं, रक्षित को जाने।
0: रक्षित आने?
1: हाँ।
0: उन तू जो आवाम है इनको कैसे सुने से तू?
1: उन ना को कोई नात सुने नहीं।
0: ते सारा को सलाम दे से कि न दे से?
1: सलाम देने।
0: सलाम तो देने वाला खफे, तू खफा थी ना, लोग इन खफे थी दे।
1: यार मैं कोई है कदा कदा खफा थी ना, खफा बंद उसे बंदे को थी दे जें देते हुज जोवे।
0: हुज जोवे
1: इना ते मैं हुज जे जो मैं खफा थी ना।
0: तेरे ना नहीं चांदे?
1: मेरा ना नहीं चांदे तो खाम खाम महीने तो बात मैं याद करें। जो
0: तू जो आज कल सदो घंटी नहीं करे ना दली बता को की, लोग तो भूल मैंने।
1: मैं को क्यों भूल दे, मैं को दिलन झा दे।
0: अच्छा ठीक है, जिला झा दे ऐसा को ना सुना जो चा सा वाने।

0: वो चीज, और क्योंकि जितनी ज्यादा आप बालों को हीट देंगे बाल कमजोर होंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे और इनकी जड़ें कमजोर होंगी। फिर बाज दफा लेडीज में ये होता है कि वो बहुत ज्यादा कस के अपनी चुटिया जो है, या पंजाबी में कहने गुत
1: को कमजोर बांधना नहीं है,
0: तो बहुत ज्यादा बालों को कस के बांधती है पोनी भी। तो चीज ये है कि बालों को इतना कसना भी नहीं चाहिए, थोड़ा दूर करें, क्योंकि वो खिंच उनको खिंचाव पड़ता है, उसकी जड़ें हमारे अंदर हैं सिर के। तो एक दूसरा ये है कि जब आप गुसल करके या नहा के निकलते हैं तो गीले बालों को रगड़ें,
1: ठीक है,
0: ठीक है, उसमें जब रगड़ेंगे तो फिर वो जाके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे आप, ठीक है,
1: ठीक है।
0: पहले बालों को जरा थोड़ा सा पोषक होने दें, उसके बाद आप बुरश या कंघी से उन्हें सुलझा लें, और वो भी नरमी से, बहुत जोर से नहीं।
1: ठीक हो गया। सो जी हकीम साहब, एक मैसेज भी मेरे पास आया हुआ था कल, कोई भाई कह रहा था कि अनस भाई, उसका भी यही बालों के हवाले से सवाल था। वो कहते हैं कि गर्मियों में सर्दियों में मेरे बालों के अंदर जो है ना खुश्की रहती है,
0: सही है।
1: सो इसकी क्या वजह है और इसका कोई टोटका भी बता दें।
0: देखिए वजह तो वही है कि बालों से थोड़ी सी केयर लागर्जी हो रही है, जहां तक टोटके की है। अब ये है कि जब पेशेंट अगर भाई दवाखाने पे चक्कर लगाएं तो मैं उनकी जेल उनके बालों की लोहिया तो उसकी कंडीशन देख के तो उन्हें बेहतर मशवरा दे सकता हूँ, लेकिन जहां तक है टोटके की बात तो टोटके में आप क्वारगंदर,
1: ठीक है,
0: और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसमें थोड़ी सी दही भी मिला सकते हैं,
1: ठीक हो गया,
0: या खाली क्वारगंदर का ही गूदा जो है,
1: ठीक है,
0: इसको आप थोड़ी देर के लिए किसी शापर वगैरह में निकाल के धूप के अंदर रखें ताकि वो नरम पड़ जाए, उसके बाद आप इसको बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं और तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद आप ताजे पानी से सिर धो लें।
1: चलें ठीक है। हकीम साहब ये बताइएगा कि अक्सर हमारे बालों के मसाइल मैंने आपको बताया कि ज्यादा है टांग में, सो मुख्तलिफ किस्म के तेलों का इस्तेमाल करने, यानी आपने एक हफ्ता एक तेल इस्तेमाल किया, दूसरे हफ्ते आपने दूसरा तेल इस्तेमाल किया, तो इससे हमारे बालों पर क्या असर बढ़ता है, जरा ये बताइए।
0: इससे जरा बहुत ज्यादा, देखिए हर जो तेल है उसके अज्जा मुख्तलिफ हो सकते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: हर कंपनी हर दवाखाना हर आदमी अपने तरीके से बनाता है। अब किसी में केमिकल्स हैं, कुछ बगैर केमिकल्स के, कुछ लोग बीच में खुशबुओं का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बगैर खुशबू के करते हैं,
1: ठीक है।
0: चीज ये है कि आप जो आपके बालों को नुकसान ना दे बल्कि फायदा दे,
1: ठीक है।
0: अगर आप तेल बदलना शुरू करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, और फिर आपकी सबसे बड़ी जो आपकी जिल्द,
1: ठीक है,
0: वो सेंसिटिव है, वो उसे कबूल करती है नहीं करती है, इस चीज से कत्ता नजर आप कोई भी तेल अगर इस्तेमाल ना करें,
1: ठीक है,
0: आप खाली सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यही है मैं आपको इस प्रोग्राम के आखिर में एक नुस्खा बता दूंगा,
1: ठीक है,
0: अगर आप वो बना सकें तो बिल्कुल बना लीजिएगा, वो आपके तमाम बालों के मसाइल के लिए है, नहीं
1: ठीक है
0: तो फिर आप उसे बनी बनाई हालत में दवाखाने से भी आके ले जा सकते हैं।
1: चलें ठीक है। हकीम साहब, हेयर फॉल के हवाले से आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह अभी आपने कुछ देर पहले खुश्की के बारे में हमें एक टोटका बताया,
0: जी जी,
1: ठीक है, तो ये बताइएगा क्या एक नुस्खा जो है
0: जी जी,
1: ये सभी के लिए फायदेमंद होता है या हर किसी का अपना मिजाज होता है, जरा ये बताइएगा।
0: नहीं, ये हर एक के बालों की नोयत अलग अलग होती है, एक ही नुस्खा या एक टोटका वो लाजमी नहीं कि वो हर एक पे काम करेगा,
1: ऐसी बात है बिल्कुल,
0: ठीक है। अब उसमें सिर्फ यही होता है, देखा यही जाता है कि उससे पूछने पे कि यार क्या मसला क्या है, अगर उसके खुराक का मसला है तो उसके खुराक को बेहतर करना पड़ेगा,
1: ऐसी बात है,
0: बालों को उसकी मुनासिब देखभाल करनी पड़ेगी, उन्हें हीट से बचाना पड़ेगा, या बहुत ज्यादा टेंशन से, स्ट्रेस से, या सप्लीमेंट से, या मेडिसिन से, तो कोई जरूरी नहीं कि बाल आपके दोबारा घने भी ना हो, बड़े भी और मजबूत भी हों।
1: चलें ठीक है। सो बिल्कुल खवातीन हजरात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ, और सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं खवातीन हजरात, जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है डेली 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो बिल्कुल, अगर आपके कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप मोअज़्ज़ज़ हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी, अभी कॉल्स के लिए नंबर खुले हैं, लाइन ओपन है 09635114888 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 03195523404 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इसी नंबर पर SMS भी कर सकते हैं, और हकीम सैयद मशकूर अहमशाह साहब से सवाल पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल खवातीन हजरात, इंशाल्लाह कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4

में सुकून सहसे जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास। जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास।

जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास। जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास।

जी बिल्कुल प्रोग्राम इसमें कश्मीरी पाकिस्तान दे और मात वेली शी सुबह रुबर तारीख और बिल्कुल तसफत दे शी इसमें कश्मीरी पाकिस्तान प्रोग्राम तासो बिल्कुल की गई लक्षण दे लेट शुमा तो बस कला कला सी कि ना इंटरनेट इशू रजी मगर कैसा लगे इंटरनेट इशू आ नो इंटरनेट इशू वो जबाने जो प्रोग्राम था लेट जा लमा और खैर दास कला कला पकी रजी प्रोग्राम शुक्र दे मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन बने की गई दादा इंटरनेट पत्र बने की नुचकला है इंटरनेट किसी इशू राशि न भी प्रोग्राम शुक्र दे मुश्किल बांधी की मतलब न की गई हाजी चलो मैं हमारे तो प्रोग्राम के इनिशमा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम के इस याद तो हर किले वही और बिल्कुल तो सफर इनिशमा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम मुख्तलिफ टाइम बने तब से की गई हाँ बिल्कुल प्रोग्राम के साथ अक्सर दाह बरकुम शिकला हम तो मुकाम लगेगी नव प्रोग्राम तो जरूर रजो सो बिल्कुल माशाल्लाह इसमें कॉस्मेटिक पाकिस्तान जिसम रहा प्रोडक्ट सी आगा हर जे की तासा अवेलेबल दी हर कॉस्मेटिक जनसुर की तासो पा आसानी से राम मिलेगी और गचर तक इन्हें मिलेगी नुमंगा प्रोग्राम की दाह बरकू से कंपनी हेल्पलाइन नंबर हम खाता सुजान सर नोट के वे और दीवानी कॉल जरूर के वे यानी कंपनी हेल्पलाइन नंबर दे 0342-311-2292 दे नंबर बने तासो कॉल को लेशी मजीद मालूमात पर अवैध माशाला इसमें कॉस्मेटिक पाकिस्तान सुन रहा हूं प्रोडक्ट सी कंपनी के द रिजल्ट डक प्रोडक्ट सी और प्रोग्राम के दाह पर अमुंग कोच चाह यूजल इंतखाब करी देश में कॉस्मेटिक अब हमेशा देश में कॉस्मेटिक

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: बाबा चिदाज लपाश मालबा मोटरसाइकिल अखले
2: ना बचे ना स्ता उमर लादा मोटरसाइकिल ले चला वोलो न दे कला चितलोशी उमर दीदा तल्लो सुकालुशी लाइसेंस से जुड़शी ब्या बदल अखले मा बचे
1: बाबा नु अखेर वली उस रात वोले ना अखले
2: गोरा बचे देर दासी खलक थी ची बे लाइसेंस गाड़ी चलाई कम ची देर द खतरे सबब उगरजी
3: धा पैगाम तासो द उलसी खेर खेगड़े लपारा द रेडियो अमल लफा वावरे दो
2: ایمان دے دا پیغام تاسو
3: د ولسی خیر خیگڑے لپارا دا ریڈیو امن لفا واورے دو